0: 야 정보 데모
1: ཁྱི ཕྱད མ ཡིན ན ཁྱི ཕྱད མ ཡིན ན
0: अरे
1: न्यांका यों आ चुका ना यं
0: अरे तुमने
1: चंचगमो ना लिंसचगमो ना मगर आज मंगन दो मुझे तो कौन तो चुमा तो आ
0: सिलंग नर तो
1: तो सिलंग ने ना यं ये ला मायूं तो यार दंग से जा रहा ये ला मायूं को
0: चित्र के सितंग ना ये साउंड की जमार गो मगर लालू मंगन दो मुझे ले सितंग ना
1: अरे का यं यं चिकन मालूम तो
0: ཁྱི ཕྱད མ ཡིན ན ཁྱི ཕྱི ཕྱི Sans cabé, quand c'est?
1: Dombo zela kuyo sokola.
0: Oh, dombo zela kuyo.
1: Allez, toi, demo.
0: Ya, demo.
1: Ya, demo.